0: 春的信使总抢先一步萌芽。
1: 收了花哦，蜜蜂活不下去，我们也活不下去。
2: और चपाला नहीं के व्यवहार गुहार है नहायत ले आज हम इसके लिए वो सुख मस्त माय दिखा रहे थे।

0: 信使，总抢先一步萌芽。
1: 说了话，你们活不下去，我们也活不下去。
2: और चुपाला नहीं के बेबाहर गुहार हैं यहाँ या तो दर आज हमें सीधे वो सुकुमा समाई दिखा रहे हैं दिखा
0: रहे हैं हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ
3: हाँ हाँ हाँ हाँ
4: 现在割草全部收起来，牛秋天冬天吃。
0: 红叶是秋的绝唱，尽情挥洒，岁月浓墨。
5: 我们家客人躺在房间里，能看到白哈巴最美的风景。
0: 冰雪是冬的沉淀，静候万物破茧重生。
6: 冬窝子是我们四个理解中的一个家，我很喜欢这里，很温暖。
7: 新疆是个母亲湖嘛，到我儿子这一代了，也养两代人了。
0: 山河不老，生生不息。

0: 是春的信使，总抢先一步萌芽。
1: 说了话，你们活不下去，我们也活不下去。
2: और चुपचाप नहीं के बिहार गुहार हैं यहाँ यात्री लोग आज हमें सीधे वो सुबह मस्तमाई दिखा रहे हैं क्या
0: नहीं है क्या नहीं है क्या नहीं है क्या नहीं है क्या नहीं है
3: क्या नहीं है क्या नहीं है क्या नहीं है क्या
4: नहीं है क्या नहीं है क्या नहीं है全部收起来，牛秋天、冬天吃。
0: 红叶是秋的绝唱，尽情挥洒，岁月浓墨。
5: 我们家客人躺在房间里，能看到白哈巴最美的风景。
0: 冰雪是冬的沉淀，静候万物。破茧重生，
6: 冬窝子是我们四个理解中的一个家，我很喜欢这里，很温暖。
7: 新疆是个母亲湖嘛，在我儿子这一代了，也养两代人了。
0: 山河不老，生生不息。